0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: निकटमा दिदी बहिनी, विकटमा दिदी बहिनी, यो रेडियो दिदी बहिनी।

को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाऊ सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले जीऊ।

0: आवाज बिहीन को आवाज परिवर्तन को संवाद रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz
1: 500 देखि 900 मिलीलीटर का आकर्षक पेट बोतल हरुमा